0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम चुन के रे वेर क्वारो
0: पियम चुन के रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेल आ लोको कॉल मी
1: इटीनो और रेडियो

0: हम ये करे वेर क्वारो
1: अलीशानी हुई यूं कौन कौन
2: बीमार मैं पाचो
0: इटी यूनियो और रेडियो पियूं ये करे वेर क्वारो
2: बीमार मैं पाचो
0: इटी यूनियो और रेडियो